कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

अनलिमिटेड रेडियो फन का नेट एफएम डीजे नाइट फन का सेट वेना टैग दिनना नेट एफएम डीजे नाइट मेसिकुरादा रे नोवेटर.

0: यहाँ तलिहा।
1: हेलो हेलो हेलो माटा हान गुडाक देवाल थी बुनट ए आदि के आना मुकुत मती बिलाना है।